ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्याधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर् ओम भुवः ओम स्वाहा।

ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।